धन तो बिडावे अरे ए ना ओकना तो ना तुवे दोरनी ने ना तिम बथ्यो एम बलिव दी अनियत आओ उन उधई ही दाबदाए नो इन निसरे का तवामे नो तवाए नो इन निसरे का एक ना अरे का तीने अरे ते का तीने इम बरे रशद बरा रशद आको रशद एक ना दाए ब्रंशी दो दाए था आती इतरशिद ना अमाक रशी दो अमाक था आती इतरशिद ना तो ना तो दाए थे ने सरी ओकना बेत तो ना ती दाए इन निसरे का ते न ते दाए सोया ना ते न ते दाए रहसाना दिया ओकना नेत आओ ऊतक का गिंदिया थबे थी तो दूर अरे हुआ ओरिया हुआ वह बिन तेरा बंदे इंदी तो दूर अरे तवास्ते नहीं आती सो की ना वह बिन रिश्ते नहीं आया इन बरे कस्से दाए ती सो की ना तो दूर अरे भी बरी एक तोले हाफी बिथाएक ओरिया भी कोना एक इंदोर ऊ सिमाए कुड़ी नी तोले रिश्ते नहीं आया ना अरे ले तवाया ना फगरा फगरा अके ना दाई था आती दाया ना ए दाई ओ धई वविन कायक न हमोसाना इदादिस कायक न ऋषिदना उत्था आती यर सोतनियो ओ सो दाई उन ऊ सुंबरू उगनी इबदायती लेत लेत बित काय देवनो हैया केतित हैसा केन बेतुनाती दा हेनिन दाई न यर ने सरेव यार अरेना अरित अरितेना बराक नहन धयो नानो को बेतुनाती दा दाई न ने सरी ओकना दाई न तवाया ना यार एक तेन अति दाई उस दिक कतियक सोया ना हमोइसा कतियक सोया ना थदारित कतियक सोया ना उस दिक कतियक सोया ना अरे यार एक न बा मागना गले करावे ददीना गले कराव इतिकेकना ओरे रुआ ते तेन बते ते दाई इतिकेकना तवाया ना दी तित सोत नहीं आया तो और तिकतियक उसानो खमोइसी तिंदी आया और कतियक तुकातो दाए बगुनो खोई दिया तिंदी आया उम्बतु कस्तु यार ही दद्दे तवाई ही द दाए इम्बते कस्ते सकेने यारक न लही तेरा शिद नोकना असे ही सकेनो तो बुढ़ावी उधायून इन्हें इन दाई न निसरी वोकना तू न तो दाई दी म दाई ते कतियो बेन ओदोर तुशबोबी तुशाबू बुआ आ थदरे हुआ आन फगरंदी हुआ ओरिया हुआ तित्तान इम्बता यारे तवाई इन यार उबोई सकेनो लहित लहित बित का यार गरोयो इराशिद ना बरयोक न दाई ना दाएन वरी ने दा ना दाएन बेत तो ना ती दाए इन हिन हिन असासक धैयो नेहरू असासक उन नेहरूए उन उधई असासक दाई दाई थाए आती दाए ने तो ना नेहरू इन यारान वा इन सिर कायान इन बरा रशदो नु रशद दाए तवाने एक शुभोबी ऊतक सूर्य दबाब कक दिया फेराई दो बनु इकती हन रे उबार शाद तवामीन मल है तरमू मनु इकती हन ना तवा कान हाथ आये दिया मल है उत मल है सो किन्ना तरमू मा हुआ मल ही हुआ इंदरे सो किन्ना रशाद उकना गार रे वंग के आक इन सरिका हुआ यार आकना रशाद बेत तो ना ती दाय हिनें इन यारान दाय दाई ने थरे नी दाई थाय आती दाय ने बका लहित लहित बितकाई हिनें है ने मार्डेट अमसे बारूक उकना उक तिकते ना आन उन निसरिका दिशबोबी नहीं भवाते कतेक भवा बहवी ना भवा उकना हवासा तेदने यारे बर हर दीते हवा हवा न दीना थवा उदाई भवासा ना भवा बहवी ना अरे उकना बागुस्सा ना भवा उकना तो नंबर तो दाए बे दिशबोब तेदने निजाम दही तीन हमसे ना निजाम तिंदियक और मर्दोर फितेराया मर्दोर महसाया मर्दोर देरा रात इंदी आया तुम अरे तोकन तु दाई रिसेतित का तोन आया तुम बतो तोन अमसे आया दीतित तोकन अमसे तिनी हुए तुम्हारे लही तुए तिनी हुआया तू ना ना ना तु तिंदी एक ओकन तुबनी तु बरी तु उन उबाशर हुआ अदे हुआ दाई अक्ते यकें काबज वे तो ना ती दा इत्था ते दाई हिनिन निसरी ओकना उन दाब इन हिनिन गाना उन्ने तु तुबड़ावे ती उगनो हिप ईदी ने ते ना ना तो तिंदी एक ओन उन्हें सिरिक अना और बर्राब हवाया हल्लान हल्लान का एन बक दिफा और दिफा दी तित का बर्राब का सुके फरा दी मा सुके कित फेरा ओ दोर हवा अरवाब इकतिये हवा स्तिनिया वो हवा अरे अरवाब भी काये दोर दिवा तिंदी आया जमन एनो राहाते कहा तिंदी आया अरे अना और दिफात मल्ला मर दोर आ तिंदी आया वो हवा ओकना यार इदाई हुआ दाए हवा हुआ उम्बरोर हिस्तिनी है थवास्तिनी आया सो और उन धायून दमन बेन आई
maashallaah imandaraahinawo un wawli ihiino been odor daayitaa aatiib ihiin dahase henin dahoynihay udamaan usuure bakaad erib udahay mindar eyaanay tumadiina eyaano taya tusuure dhakaat erib bettunaatiida nazamteene toona zamaneknawo hawaawa teerawo imbare nizaam dayted ine toona umbatu arriwookna tadriise katiyek allamteni aya teena tidaay tisookiinaaya teena tidaay ristini aya henin kastuutuni sariweetukna daayi badaayin daayi tayaatib badaayin niyaadib imbalib niyadookna bettunaatiiday shibobna yariyokna day shibobna yarek ikna nakumanaayaana nisirik uukna unakumana henin nisariwi naagwadibu tednek nisirik uukna unuudhay ore ifira sigiya baksaka eedn or uukna hirere inu bak oguruma shishtiniyay ana oru mbaruk daywa tindiya idaayif tindiyaya are uknaayuk inakumanaaya kasiistiniyaya naanaatu tindiyek malla udhayida nakumanaayini kaabu udhayida ishibobe kaabu udhayida masiguwa daayinawa tawaayini kaabu henin bettunaatiida in yar imbalib tudayniyade yaramba ishibubna ba iirshidnahoon lahit ba itfeyiknahoon daayita atibba daayin uudhaareerheeno maashallah uwor na abunaanaay orkeeke maashallahi daay oru daayi tarbiyaay rabbiyaaba daayi soysooyaaba ba iyaadnamiyaadib henin imbalib niyadukna bettunaatiiday shibobna ugaroyokna day shibobna yareyokna day shibobna udayida shibobna ushawiida shibobna imbate kaste henin nisariweetukna naato ako uttunaatiiday udhayun tubidhawi eheeni miinika daayib daayineed areeni bettunaatiida shalla daayib daateena shalla daayitaa aatib daateena ene nistirahuknane